0: गीता ज्ञान।
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम समर्पण। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुमधुर रसमय भजन का साथ में अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। जीवन जीवने कला श्री श्री रविशंकर जी को एक प्रयास आर्ट अफ लिविंग को संयोजन में FM अध्यात्म ज्योति को प्रस्तुति श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम अमृत धारा प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 5:30 देखि 6 बजे सम्म र साँझ 8 बजे देखि 8:30 सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योतिमा।
2: यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।

शाम पिया मोरी रग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं, एक नया अर्थ सामने आता है। तात्पर्य है शाम रंग से, अब रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शब्दों की सुंदरता देखिए।

0: कहिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: हिले यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए,
2: मलाई फ्रॉक,
3: मलाई पनी सूट,
4: वाओ, अनि मलाई

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ।
1: FM AJ 104.8.

0: क्रिस्टा कलेक्शन सुन चांदी तथा हीरा जे किन्नोस जे जे ज्वेलर्स के किन्नोस
1: जे जे ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी
2: संपर्क नंबर 5320411 9820076888
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान
3: One oh four eight.

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

0: காவேல் சுச்சபாக்கி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: भोलि त्यहाँ त्यो फिल्म हेर्दाखेरि भोलि मानौ न
1: मिति गङ्गुदी मङ्सी।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: हे हे,
2: हाय हाय,
1: बाफ रे बाफ,
2: वाव वाव,
1: जाऊ न जाऊ,
2: आऊ त आऊ, श्रेष्ठ टेलरिंग,
1: या बेबी या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैंभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल।
4: FM AJ 104.8 MHz।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूतीबाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

सद्गुरु प्रवचन श्रृंखला अन्तर्गत एफएम अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा श्री श्री रविशंकर जी को प्रवचन माला कार्यक्रम अमृत धारा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक श्री इन्वेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ यहाँलाई द आर्ट अफ लिभिङ को संयोजनमा सञ्चालित यो कार्यक्रम अमृत धारामा। अब हामी द आर्ट अफ लिभिङ का प्रणेता श्री श्री रवि शंकर ज्यू को प्रवचन श्रृंखलाको क्रममा आजको प्रवचन सुन्नेछौ।
1: कल्पितं रज्जु सर्पवत् दिति साफ दिख गई रस्सी में। इसी तरह से चैतन्य शक्ति हमारी चेतना में, आत्मा में ये सारा संसार दिख रहा है भाई। इतना तो जान, कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है, सब व्यक्ति के अंदर एक ही मन का प्रवाह है, अस्तित्व है। जितना हम सूक्ष्म जाते हैं उस एकता के ओर जाते हैं, उस एक तत्व के ओर जाते हैं। शरीर स्थूल शरीर दूर दूर है, मगर सूक्ष्म ढंग से देखोगे तो जो प्राण जो सांस इस शरीर में चल रहा है, वो थी सांस उसमें उसमें उसमें सभी शरीरों में चल रही है। और उससे भी प्राण से भी सूक्ष्म है मन। इसलिए अचानक तुम्हें कभी प्रसन्नता होती है किसी व्यक्ति से मिलने से, और किसी से मिलने से अचानक दुखी हो जाते हो, होते कि नहीं? मन इससे सूक्ष्म है, मन का एक फील्ड है जिसको कहते हैं, मन का अपना एक विस्तार है। अपना सेवा भी करने के लिए क्यों कहते हैं, हम जुड़े हुए हैं ना दूसरे सबसे, जुड़े हुए हैं। वहां वो हो तो उसका असर तुम पर भी पड़ेगा। आनंदम परमानंदम सबोधस्वम सुखी भवा, मैं आनंद हूं परमानंद हूं, ये बोध तेरे भीतर जाकर तुम सुखी हो जाओ, मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान ऐसी गहराई से उठे। ऐसा मुस्कान एक बार उठ जाए फिर मुरझा नहीं सकता, फिर मिटता नहीं, फिर घटता नहीं, बना रहता ये सुख। बोध से निकलना चाहिए ऐसा सुख, ऐसा मुस्कान, फिर बाकी तो फीके पड़ने लगते। जिसकी तलाश में हम ये सब कर रहे हैं, डोल पीटते हैं, गलत सलत काम सब कर बैठते हैं लोग, उस सब का मकसद एक ही, मैं सुखी हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। वो आनंद और सुख तेरे भीतर बोध के भीतर छिपा हुआ है, उसको पहचानो, उसको जानो, उसको जगाओ। अच्छा ये करें कब, मैं कैसा मुक्त हूं, ये कब होगा, पर मैं तो बंधन में हूं, घर का बंधन है, पैसे का बंधन है, पद का बंधन है, औरों का आसपास अड़ोस पड़ोसों का बंधन है, कुछ ना कुछ बंधन है। कहीं भी आता हूं तो कोई बंधन ही बंधन है, आश्रम पहुंचता हूं इधर भी बंधन है, उधर मत जाओ इधर मत जाओ, या सुबह उठ के आसन करो प्राणायाम करो ये करो वो करो, ये भी बंधन लगता।

वदन तीज सत्येयम। क्या कहे सत्य यही है, जैसा मति वैसा गति, जैसे तुम सोचते वैसे तुम होने लगते हो। तुम अपने आप को बंधन में हो ऐसा करके महसूस करते हो तो वैसा ही होगा। तुम्हारा अभिमान एक मुक्त के साथ हो तो मुक्ति तुमको महसूस होने लगेगी।

तुम अपने आप को एक अहिंसक मानो तो तुम अहिंसक ही बनोगे। या मतिर सा गतिर भवे, जैसा मति है वैसे तुम्हारी गति होगी। तुम अपने आप को नलायक नलायक समझते रहो तो नलायक ही रहोगे। अक्सर लोग पूछते हैं हमसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव करें, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। मैं कहता हूं बिल्कुल संभव नहीं, कोई चारा नहीं। आत्मविश्वास बढ़ ही नहीं सकता तेरा। नहीं मान के सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, नहीं है मान के बढ़ाओगे कैसे उसको? नहीं है। अपने आप को कमजोर मानने वाला व्यक्ति कमजोरी बना रहेगा। जागो, तुम मुक्त हो, तुम्हारा अभिमान मुक्ति पर होना चाहिए। मैं मुक्त हूं,

呀，वाह, क्या गलती कर बैठते थे हम लोग। सुख भोगा तो बंधन का अनुभव हुआ, दुख भोगा तो बंधन का अनुभव हुआ, मगर मैंने जाना नहीं मैं सुख दुख से परे हूं। तो मेरा अभिमान सिर्फ मन के तरफ स्तर पर टिक गया, वहीं रह गया।

एक बाबा थे मुक्त डायोजनीस करके, कहते उनको जब बांध के लिया जा तो उनको गुलाम बना दिया, बड़े अड्डे कट्टे थे उनको। जब आक्रमण हुआ हिंदुस्तान के वो पश्चिमोत्तर दिशा में, जब इनको बांध के रस्सी से और सलाखे से बांध के ले जा रहे थे गुलाम बना के, तब भी वो चिल्ला के बोलते थे मैं हूं यहां बिकाओ में, जो जो खरीदना चाहते खरीदो भाई आओ, मुस्कुराते मुस्कुराते मैं मुक्त हूं, एक मुक्त व्यक्ति है यहां। दूसरे ने इनको गुलाम समझा, मगर वो अपने आप को कभी गुलाम नहीं समझे, मुक्त ही समझे थे। तो समझने वाले भी क्या समझे, वो भी डर के भाग गया था, उनको भी लगा रहे भाई कैसे समझ सकते हैं। हम अपने भीतर जाके देखते नहीं, उलझे रहते हैं। जागो, अभिमान मुक्ति के साथ लगाओ, जब किसी को कोई बीमारी लगती तो बीमारियों का वर्णन करने लगते हैं, और डॉक्टर भी यदि बोले नहीं तुम्हें ये बीमारी नहीं, कि डॉक्टर पर ही गुस्सा करते हैं। यहां पर कुछ डॉक्टर सज्जन आए तो उस दिन कह रहे थे हमसे कि गुरु जी क्या कहें, कुछ ना कुछ दवाई देना ही पड़ता है। हम कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है तो हम पर नाराज हो जाते हैं पेशेंट्स, पेशेंट्स को रखने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं हम, कोई विटामिन कुछ दो दवा देते, अंग्रेजी में इसको कहते प्लेसिबो इफेक्ट, सच में दवा नहीं होती है, वैसी चीनी की गोली वो खा के लगता है, जैसे होम्योपैथी गोली होती ना कुछ खा के लगता है कि हमने कुछ दवा लिया तो ठीक हो गया।

तरह तरह की चित्त विभ्रांति भ्रम हम पैदा करके बैठे हुए होते हैं। बंधन भी इस तरह का एक चित्त का भ्रम है। अरे तुम्हारे चित्त पर क्या पड़ा है, पता नहीं कब कब तेरा अंत हो जाएगा, कभी तो मर जाओ, तुम्हारा क्या जिम्मेदारी है सर? करने वाला तो कोई और है, सबका मालिक है कि सबको देखने वाला कुछ कोई है, सबका जिम्मेदारी वो उठा रहा है। हम अपने सिर पर समझते हैं सारा बोझ है, बंधन है। जाके देखो तुम मुक्त हो। या मतिर सा गतिर भवे, फिर भी मैं यहां कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना जिम्मेदारी छोड़ दो, बच्चों को खाना बनाना, बच्चों के लिए घर बार संभालने का काम, ये सब छोड़ कह रहे भाई ईश्वर देखने वाला है, मैं कौन देखने वाला हूं, ये नहीं चलेगा। जनक अपना पूरा जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं, और ऐसा निभा रहे हैं कि वो बंधन भी ना लगे। जो जो बंधन ऐसा नहीं मानता है वही उस काम को अच्छे ढंग से कर भी पाता है।